उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

हे सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

वेद सार शिवस्तव। हे पाप विमोचन महादेव, हे नित्यानंद स्वरूप, पंचमुख त्रिपुरारे, आप प्रसन्न हों।

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: एक बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है। वो उदास रहने लगते हैं। धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं। कांवर लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

और राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे हम डरते थे वही बात हो गई। कुमार सानू एंड अलका जी, फिल्म का नाम विजय पट एंड उजाला रेडियो। तो जाने है तो मोई लगे है तो दान एक और गीत, हाँ फिर कुमार सानू जी की आवाज में होंगे।

धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे से दिल को चुराना। Originele kino van Kumar Sanu uit de film Anjiki, maar dit is de stem van Vishal Krul, destijds met de formatie Sabroso, afkomstig van hun album volume 13.

झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लूट जाए। फिल्म का नाम है पठान एंड दिस इज सिम्फन अरिजीत सिंह सुकृति कक्कर एंड ऑफ विशाल एंड शेखर ऑन द वोकल्स। Ja, in deze heerlijke Ghana in de film Pathaan dus. Met onder andere Shah Rukh Khan en de mooie, prachtige, beautiful Deepika Padukone. Ja, we blijven bij de stem van Arijit Singh. Isbar Tulsikum Markezaat. Filmke naam heet Hokha Round the Corner. Organeke naam heet Mahi Mera Dil.

हैं बीनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस आई बिनकोट रहा हूँ, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टा कॉप मैथ उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सभी सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आप सभी सुनने वालों को अदाब अर्ज और नमस्कार। मुझे यकीन है कि कितने सुनने वाले इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाए, मजे लीजिए। प्रोग्राम आगाज करती हूँ आशा भोसले की गाई हुई ये भजन से।

की परमेश्वर रूहानी अंदाज में पेश थी ये भक्ति गीत। संगीत देने वाले थे श्री रामचंद्र और महान कवि प्रदीप का गीत रचना था। ऐसे ही रूहानी अंदाज में नाथ शरीफ पेश है। महेंद्र कौर की आवाज में तर्स है, नूरे नबी से रोशन है।

नूरे नबी से रोशन है सीना, अनवर फरूख आबादी का कलाम और मामी बच्चों की मौसिकी में नाज शरीफ पेश था। आपकी याद आती है तो कभी आंखें भीग जाती है, तो कभी यादों में रातें बीत जाती है। कोशिश तो बहुत की पर यादें तो यादें हैं, कभी हम हार जाते हैं तो कभी यादें जीत जाते हैं।

छाया गंगुली से पेश थी ये गजल शायर मखदूम मोहियुद्दीन का कलाम और मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी। कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, उस्ताद गुलाम अली से पेश है ये गजल।

राशिद कामिल का कलाम और उस्ताद गुलाम अली की आवाज़ में पेश थी ये गज़ल। ज़रूरी तो नहीं जुबान से कहे दिल की बात, जुबान एक और भी होती है इजहार मोहब्बत की। दिल की बात कहीं नहीं जाती, चुप के रहना ठाना है।

दिल की बात कहीं नहीं जाती, बेगम अख्तर की आवाज में पेश थी ये गजल और महान शायर मीर ताकी मीर का कलाम था। फिर किसी से बातें वो मुलाकातें अब नहीं होंगी, रातें तो होंगी, रातें तो होंगी, पर वो रातें अब नहीं होंगी। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुड़ते हो गई मुस्कुराए।

बात सोचा तो आंसू भर आए, गजल शौकीन के लिए कुछ गजलें सुनवाए। प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं। अब हम आपको हल्के हल्के मीठी धुनों में नगमे सुनवाएंगे।

तो कहीं दीव के कोने में दबी हुई नगमे उभर आएंगे, जैसे कि ये दो गाना। ये किसकी आवाज है? शायद आप पहचान जाएंगे।

री पतंग चली बादल के संग। जी हाँ, याद आई ना ये किसकी आवाज थी। फिर भी बतला देते हैं, गाने वाले थे शमशाद बेगम और उमा देवी। उमा देवी जो फिल्मों में मजाकिया रोल अदा करती थी और टुनटुन का नाम से मशहूर थी। अगला जुगल गीत आइए सुने, इस बार शमशाद बेगम की साथ सुर से सुर मिला रहे हैं मोहम्मद रफी साहब।

पर क्या थी गम खाना पड़ेगा। मौसिकार नौशाद अली की मौसिकी और शकील बदायूनी का कलाम था। गीता दत्त शोही आवाज में क्या सुनाएंगी, आइए सुनें।

था नगमा पेश था और ये नगमा फिल्म कमांडर में से लिया है। परवाह कर उसकी जो तेरी परवाह करे, जिंदगी में जो कभी ना तन्हा करे, जान बन के उतर जा, जान बन के उतर जा उसके दिल में जो जान से भी ज्यादा तुझसे वफा करे।

फिल्म टॉवर हाउस का नगमा पेश था और ये ड्यूएट अजीत और शाकिला पर फिल्माया गया था। सदियों से इस दुनिया में चल रही है मोहब्बत की दास्तान। दुनिया की दो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग न जाने कैसे मिल जाते हैं एक दूसरे से, दिलों की दौड़ जोड़ती है और बन जाती है मोहब्बत की एक नई दास्तान। ये सिलसिला है प्यार का, जिसका हिस्सा है हम और तुम।

0: मोहब्बत भरी शायराना अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिका रोशन की मौसिकी, साहिर लुधियानवी का कलाम और मोहम्मद रफ़ी साहिब की आवाज़ इस गीत में चार चांद लगाए है। इश्क मोहब्बत अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये तो वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इश्क मोहब्बत क्या है सुनाएंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस CH आत्मा।
1: हर दर्द की तैयारी

पल जो मिला है तुमको जीने के लिए। खूबसूरत अंदाज में पेश था ये सूफियाना कलाम CH आत्मा की आवाज में। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत। आप प्रोग्राम को सुनते जाना, अभी थोड़ी देर में फिल्मी दुनिया पेश किया जाएगा।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं, इस हिस्से का प्रोग्राम में हम अक्सर फिल्मी दुनिया का सुनहरी दौर के महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ, जो आज के दौर की कलाकारों का मिसाल है, प्रेरणा है, फॉरबिल्ड है। आज हम एक ऐसे ही फनकार के बारे में बयान करेंगे जो अपनी मखमली आवाज से हम सबके दिलों में घर कर गई। वो गायिका है सुमन कल्याणपुर। वो कौन थी, उनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस खानदान से थी, इन सब पर हम तवज्जो देंगे। पर हम इस महान गायिका की आवाज में ये गीत सुनवाते हैं।

अभी आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत सुना जिसके बारे में हम बयान करेंगे। उनके निजी जिंदगी और संगीत सफर के बारे में हम छोटे रूप में कोशिश करेंगे बयान करने को। सुमन कल्याणपुर कमाल की गायिका थी, जबरदस्त सिंगर थी। उनकी पैदाइश 28 जनवरी 1933 में कोलकाता में हुई थी। सुमन जब 3 साल का था तो उनकी वालदेन हिमादी फैसला किया ढाका में रहने को। उनके वालिद शंकर राव हिमादी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सुपरवाइजर थे। सुमन हिमादी अपनी 5 बहनों और 1 भाई में से सबसे बड़ी थी। माँ सीता हिमादी अपने परिवार के साथ खुश थी। जब सुमन 6 साल की थी तो उनके वालिद की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की वजह से पूरा खानदान मुंबई चले गए। फिर हिमादी परिवार मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। सुमन को बचपन से ही मौसीकी और पेंटिंग में शौक थी। मुंबई में उन्होंने मशहूर सिंध कोलंबा हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल किया, पर बचपन में उनका मकसद गायिका बनने को बिल्कुल नहीं थी। सुमन को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। स्कूल ख़त्म करने के बाद उनकी सलाहियत मतलब इंतेखरीतैत की वजह से उन्हें मुंबई के बहुत ही मशहूर आर्ट कॉलेज सर जी स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग पढ़ने के लिए दाखला मिल गया। बातें आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं फिल्म जहां प्यार मिले में से ये

महान गायिका सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने भी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि सुमन को बचपन से ही पेंटिंग, ड्राइंग और संगीत में शौक रखती थी, क्योंकि वो ढाका और कोलकाता जैसे जगहों पर रहती थी और बंगाली और मराठी जुबान उनके लिए आसान थी। इसी दौरान उन्होंने पुणे प्रभात फिल्म से क्लासिकी संगीत सीखना शुरू किया। म्यूजिक डायरेक्टर और खानदान की करीबी दोस्त पंडित केशव राव भोले से। पर सुमन ने कहा कि शुरू में उनके लिए गाना अहम नहीं था, सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग में दिलचस्पी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मौसिकी में ज्यादा ध्यान देने लगी। फिर सुमन ने उस्ताद अब्दुल खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से बकायदा सीखना शुरू कर दिया और सुमन की छोटी बहन श्यामा हिमादी भी गायिका थी। सुमन हिमादी ने नेखतिन अख्तम फैफ्तक में बिजनेसमैन रामानंद सागर कल्याणपुर से शादी कर लिया, जिसके बाद वो सुमन कल्याणपुर के नाम से मकबूल हुई। रामानंद अक्सर अपने बीवी के रिकॉर्डिंग सेशन में साथ जाता था। सुमन कल्याणपुर की एक बेटी है जिसका नाम है चारुल अग्नि और वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका चले गए और चारुल अग्नि को भी एक बेटी है और नाम है ऐशियानी अग्नि और बाद में ऐशियानी अग्नि फैसला किया मुंबई वापस जाने को और वहाँ एक एनजीओ खोली अपने नानी सुमन कल्याणपुर के नाम से। हमने आपको सुमन कल्याणपुर की बचपन और पढ़ाई के बारे में इत्तला किया और किससे उसने शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल किया। पर कब उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी, एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे। गीत जो अब आप सुनेंगे फिल्म श्रीमान सत्यवादी में से लिया है। सुमन कल्याणपुर के साथ थे मन्ना देसाई साहब।

इस गीत से पहले हमने आपको सुमन की बचपन के बारे में बतलाई और उसे किस किस से अपनी मौसिकी की तालीम हासिल किया। सुमन के घर के सभी लोग का झुकाव आर्ट ऑफ मौसिकी की तरफ था, पर बाहर गाने के लिए पाबंदियां थी, सख्त मना था। सुमन ने कहा, फिर भी मैं नेखती तोयम फैफ्तख मेल ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने से इनकार नहीं कर सकी। ये मेरी आवाम के लिए पहली परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मुझे गाने के मौका मिला मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में, जो नेखतेंद्रियम फैतह में रिलीज हुआ था। उसी दौरान अदाकार शेख मुख्तर फिल्म मंगू तैयार कर रहा था, जिसके कंपोजर था मोहम्मद शफी शेख मुख्तार। मेरे गाने शुक्राची चांदनी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मुझसे फिल्म मंगू के लिए 3 गाने गवाए। सुमन ने कहा, कुछ ना मालूम की वजह के बिना पर बाद में संगीतकार ओपी नैयर ने मोहम्मद शफी की जगह ले लिया और मेरे 3 गानों में से सिर्फ 1 लोरी कोई पुकारे धीरे से तुझे फिल्म में बरकरार रखी गई। तो इसी तरह मैंने नेखती फिल्म फैतह में रिलीज होने वाली फिल्म मंगू से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। आपने सुना कि सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी सॉन्ग फिल्म मंगू का गीत था। इस फिल्म में अदाकार शेख मुख्तर सुमन से 3 गाने गवाए थे, पर संगीतकार ओपी नैयर 3 गानों में से सिर्फ 1 गीत पसंद किया था। अब हम आपको फिल्म दखाबाज पिया में से ये गीत सुनवाते हैं।

संगीतकार चित्रगुप्त और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था आवासी महान गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिसके बारे में हम बयां कर रहे हैं। फिल्म मंगू के फौरन बाद सुमन ने मौसिकार नशत की हिदायतकारी में 5 गाने फिल्म दरवाजे में गाई थी, जो नेहतीन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुआ था, जिस फिल्म का पेशकश था इस्मत चुंगताई और हिदायतकार था शाहिद लतीफ। उसी साल नेहती फिल्म फेस्टिवल में सुमन ने मौसिकार ओपी नय्यर के मशहूर गाना मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है गाया था। साथ में थे मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त जी। जी हाँ, इस गीत में मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त की आवाज सुनाई देती है, पर सुमन ने कहा उसे इस गीत में गाने के लिए कुछ सोलो पंक्तियां, मतलब कुछ सोलो लाइंस मिली थी, लेकिन सिर्फ उसकी खिदमत हासिल की गई कोरस में। इस गीत के बाद सुमन ने दोबारा मौसिकार ओपी नय्यर के लिए कभी नहीं गाई थी। और एक बात यह भी है कि डिस्क पर सुमन का नाम के बारे में जिक्र नहीं किया गया। संगीतकार ओपी नय्यर ने कहा कि कुछ वजह से सुमन के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर आए। शायद इसलिए क्योंकि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो उनके बेटी स्कूल में पढ़ती थी। अब हम आपको फिल्म आर पार में से वो मशहूर गीत सुनवाते हैं, आइए सुने।

फिल्म आर पार में से आपने अभी ये गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की, लेकिन गौर से सुनेंगे तो गीत में एक और आवाज़ सुनने को मिलती है। वो आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा नहीं गया। तो जैसे मैंने कहा था, सुमन की वालदैन नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर लिखा जाए। अब हम आपको सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये जुगल गीत सुनवाते हैं। फिल्म जहां आरा में से ये गीत लिया है।

मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था महान कवि राजेंद्र कृष्ण का। पर कब और कहाँ तलत महमूद सुमन को पहली बार सुना था? सुमन कल्याणपुर अब गाने में ज़्यादा ध्यान देने लगी और जब कहीं फंक्शन होता था तो सुमन को प्रोग्राम में शामिल करते थे लोग गाने के लिए। इसी तरह तलत महमूद ने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुमन कल्याणपुर को गाते हुए सुना और उनकी गायकी से बहुत मुतासिर हुए। तलत महमूद वॉज एरग ऑनडर द इंद्रुक फन हर स्टेम। अब एक बिल्कुल नई आने वाले लड़की उनका कैरियर बुलंदियों पर पहुंचा और फिल्मी दुनिया या कहिए संगीत की दुनिया को चौंका दिया जब तलत महमूद सुमन के साथ डुएट गाने पर राजी हुए, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अलर्ट होने पर मजबूर कर दिया। मैंने सुमन कल्याणपुर के बारे में बातें की है, अगले हफ्ते मैं सुमन जी के बारे में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं के आवाज़ में आइए सुने ये गीत।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में बयान किया। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

दिल छू लेने वाली नुहमा पेश था, चित्रगुप्त की मौसीकी थी, कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का। हम रहे या ना रहे इस जहां में, गूंजेगी गूंजेगी मोहब्बत की ये सदा तुम्हारे लिए। फैसला कर लिया है मेरे दिल ने, मुझे बस तुम्हारे दिल में ही रहना है।

सदाबहार दो गाना पेश था मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। दुनिया के फिक्र से आज़ाद हूँ मैं, हमें क्या गरज की जहाँ क्या है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं हम।

कमाल का गीत आपने अभी द ऑल राउंडर किशोर कुमार से सुना, उन्हीं का सजाया संगीत था और इस गीत का तर्स खुद किशोर कुमार ने लिखे थे। शोला हूँ भरकने की गुजारिश नहीं करता, सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, खौफ की बंदिश नहीं करता, बंदिश मतलब बपैरकिंग, तो धोपिया तू अब तो आ जा।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए किसका इंतजार उजाला द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड ज्यादातर 30 सितंबर और ये भी मेरफा थिएटर में आ रहे हैं आपके शहर में शेखर कुमार लाउस्मी ओब्रॉय के साथ अयान मुखर्जी बॉय के दर्दीन और निजाम वागी डिजाइन मिशकाल बखलाइडिंग इस हंड फन मुंबई बीच ज्यादातर 19 सितंबर सनीचर की रात है तो रात के 7 बजे इन लोग और प्रोग्राम रात को 12 बजे खत्म होने वाले हैं कॉपी टिकट्स ऑफ टाइम या मेरफाट.net

मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। संगीत देने वाले थे संगीतकार राहुल देव बर्मन, गीतकार थे शायर गुलजार। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम उस मोड़ पे आ पहुँचे हैं मोहब्बत में, जब जब वो मेरी जिंदगी में बहार बन के आए।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा, आवाज थी अलका याग्निक की। छुपा लेते हैं जो हर गम को अपने मुस्कुराहट में, वो अक्सर टूट जाते हैं अकेले तन्हाई की हालात में। छुपाते हैं दर्द दिल दुनिया की नजरों से इस तरह, जैसे कोई आग दबा लेता है अपने सीने में।

0: कमाल का नगमा आपने अभी स्वर की मालिका लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर नक्श लियालपुरी का। जिंदगी जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो एक असूल बना लो, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है और जो मिला वो लाजवाब है। इसमें मनदी क्या सुनाने को जा रहे हैं, मीठी आवाज में लीजिए पेश है।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

जी हाँ, भरकता गीत आपने अभी मनदे साहब से सुना। अगला नगमा पेश है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा, मौसिका रवि की मौसिकी थी, कलाम था शायर शकील बदायूनी का। इसी अंदाज में पेश है अगला नगमा एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: दिल छू लेने वाले नहमा पेश था, मौसिका खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर कैफी अजमी का। और ये नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। अगला नगमा पेश है मुकेश जी की मधुर आवाज़ में।
1: जब

0: अमर गीत पेश था संगीतकार सलील चौधरी का संगीत रचना, गीत रचना था जुगेश का। अब आशा भोसले का सुनाने को जा रही है, लीजिए पेश है।
1: बॉय बॉय बॉय बॉय

अभी आपने आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत सुना, आशा जी जिसकी आवाज़ में नज़ाकत थी, लचक और शोखीपन थी। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उजाला रेडियो के जरिए आप सुनने वालों को हर तरह का प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि देश विदेश का समाचार, नए से नए गीत संगीत और सुनहरी दौर के भूले बिसरे गाने भी सुनने को मिलते हैं। बदलते वक्त के साथ जो अपना रंग दिखाते हैं, मतलब निकलते ही पल भर में भूल जाते हैं, खुदी में इतने डूबे हैं ये खुदगर्ज इंसान के औरों के दर्द को बस एक तमाशा बनाते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए।

संगीतकार उषा खन्ना का सजाया संगीत था और शायर जावेद ने दिल की कलम से ये तर्स को लिखे थे। मोहब्बत मोहब्बत अधूरी रह गई, ख्वाब अधूरे रह गए, होंठ हंसे मगर दिल की जख्म गहरे रह गए। वक्त ने सिखाया हंस के जीना, मगर क्या करे, यादों की सहारे ही हम ठहरे रह गए।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार। खादिमा थी निशा।

निजाम वागद हुसैन सुजनिया गारीमेला के साथ एंड निजाम वागद हुसैन इस 19 सितंबर इन मेरफार तू जाने है तो मैजमू माई बीच के साथ एक जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है जहां पर आपको होना चाहिए और यह यार बै होट तो गाव के परी तो देखे के परी तो सुने के परी एंड को भी टिकट्स वी अमीर फैन पे इंटरनेट अभी थोड़ी देर में हम प्रोग्राम को पेश करने वाले मैं आनंद चंद्रिका सिंह के साथ कॉफी चाय मीदक शो ढेर समाचार है कन्हैया कॉफी चाय ना रहा मार फंदाग सैम उधर वीर मैं कॉफी चाय मीदक

और ये है एक लाइव रिकॉर्डिंग मैं निजाम वाग दुजाई एंड सो खाए तो घोर इन मेरफाग तो ये तो

मौसम कहता है स्वागतम। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म तोहफा से निकाला हुआ, और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी साहब।

सोने के दिल वाला कोई चांदी का दिल वाला। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप गीत को सुने और फिल्म माया से निकाला हुआ। एंड न्यू मुकेश जी, फिल्म मिलन का गीत।

0: लोकेश जी, फिल्म का नाम मिलन, उजाला रेडियो पर आप सुने।
1: यू आर, दिस इज अनमीके बोसगaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में.

निजाम वाग डिजाइन सुजनिया गारी मेला के साथ एंड निजाम वाग डिजाइन इस 19 सितंबर इन मेरफाट तू जाने है तो मैनमू माई बीच के साथ एक जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है जहां पर आपको होना चाहिए और ये यार बाय होट तो गाव के परी तो के देखे के परी तो के सुने के परी एंड को भी टिकट्स वी अमीर फैन पे इंटरनेट अभी थोड़ी देर में हम प्रोग्राम को पेश करने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह के साथ कॉफी चाय मीटअप शो ढेर समाचार है कन्हैया कॉफी चाय ना रहा मगर फंदा सैम उधर वीर मैट कॉफी चाय मीटअप शो

और ये है एक लाइव रिकॉर्डिंग मैं निजाम वाग दुजाई एंड सो खाए तो घोर इन मेरफाग तो ये तो

Priya Saraya एंड अरिजीत सिंह, इन दोनों की आवाजों में आप इस गीत को सुने। एंड बेनी दयाल के साथ अब श्रेया घोषाल को सुनिए, युवाड़ू जला रेडियो पर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से परिवार कंधाई और परिवार झंझन के साथ बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल के आयु में द्रियन सैफ अंतखियार और लुविस झंझन कंधाई और परिवार, जॉनी कंधाई और परिवार, कार्ला कंधाई और सूरीनाम से वेली पाटक, इन सभी के भाई अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कंधाई की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले पथफनवानिका ब्राम्सोपवेख का रहने वाला था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कंधाई, परिवार झंझन और बाकी परिवारों बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल की आयु में द्रियन सैफ अंतखियार और लुविस झंझन कंधाई और परिवार, जॉनी कंधाई और परिवार, कार्ला कंधाई और सूरीनाम से वेली पाटक, इन सभी के भाई अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कंधाई की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि सूरीनाम में पहले पथफनवानिका ब्राम्सोपवेख का रहने वाला था। अर्थी के दह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 1:30 बजे फ्रेडक आंस्टांद हल्फ्टवे किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फुर्जोर्खिंग परिवार कंधाई, परिवार झंझन और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, चंगेज़ खान फिल्म से गीत को आप सुने, और ये उजाला रेडियो है।

तुम सबसे हंसी हो, तुम सबसे जवां हो। महेंद्र कपूर जी के साथ आशा भोसले से गीत आप सुने। फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है। इसी फिल्म से निकाला हुआ एक और गीत पेश है, और इस बार गायक होंगे मोहम्मद रफी साहब।

तुम्हारी मुलाकात से मुझको ये पता भी चला कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है और ये उजाला रेडियो है।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दिल। दर्द भरी गीतों के साथ प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, उन गीतों के साथ जिन्हें सुन करके कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए हम बनाते हैं, उसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और सुन करके पसंद भी करोगे। तो चलिए, आज का प्रोग्राम दर्द दिल में पहला गीत पेश है लता जी की आवाज में।

कमल जी, आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपकी आखिरी कविता मेरे ही जीवन की कहानी है। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है।

मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है। लता जी की आवाज में गीत को आप सुने। 1970 निखंतिन जीवन तक की फिल्म कति पतंग का गीत, और इस गीत को संगीत से सजाए राहुल देव बर्मन, और इस फिल्म में उन दिनों काम किए हैं आशा पारेख के साथ राजेश खन्ना जी।

याद रखूं किसे भूल जावूं। मुकेश जी की आवाज में इस गीत को सुने आप 1956-59 फेफ्तर के फिल्म अनुराग से निकाला हुआ। ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दिल जारी है।

एक इसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आशा जी की आवाज में गीत को आप सुने। 1981 के फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का गीत। इस फिल्म को संगीत से सजाइए खयाम जी, गीतों को संगीत से सजाइए खयाम जी। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए हैं नंदा के साथ शमी कपूर, कुणाल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी।

शुक्रिया ऐ प्यार तेरा। द मैन विद अ गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज़ और फिल्म 1951 नेहतिन एनन फैफ्तख के फिल्म आरम से निकाला हुआ गीत। म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के अनिल विश्वास, हाँ अनिल विश्वास जी, और इस फिल्म में उन दिनों काम किए देव आनंद के साथ मधुबाला जी। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ।

ली कितनी तन्हा सा लगे उनसे मिल के मैं आज। लता जी की आवाज में गीत को आप सुने। 1969 69 की फिल्म तलाश का गीत और संगीतकार सचिन देव बर्मन। इस फिल्म में उन दिनों काम किए राजेंद्र कुमार के साथ शर्मिला टैगोर जी।

निजाम वाग डिजाइन में सुजनिया गारी मेला के साथ एंड निजाम वाग डिजाइन इस 19 सितंबर इन मेरफार तू जाने है तो मैं मुंह माई बीच के साथ एक जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है जहां पर आपको होना चाहिए और ये यार बाय होट तो गाव के परी तो के देखे के परी तो के सुने के परी एंड को भी टिकट्स वी अमीर फैन पे इंटरनेट अभी थोड़ी देर में हम प्रोग्राम को पेश करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह के साथ कॉफी चाय मीटअप शो ढेर समाचार है कन्हैया कॉफी चाय ना रहा मैं फंदा सैम उधर वीर मैं कॉफी चाय

0: सुन वालों ये है क्या एक वो लाइव रिकॉर्डिंग है इन मेरफाट में एक कॉन्सर्ट रहा मैं निजाम वाग डिजाइन और निजाम वाग डिजाइन इस रोक अब 19 सितंबर इन मेरफाट में मुंबई बीच के साथ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर तुम ये तो कोनो की दिल भी चुराई सके भी वहां पर तो आनंद
1: तू रेक्लामा कर हम सुनील
0: आनंद नया निजाम भागी दुसैन बॉय के दादा दीन माउस मिस उबरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी दी जैन दर अलमाओ 19 सितंबर में तू जाए के तो कोई एगो मिलेगा एगो ड्रंकी ग्रातिस गार्डरोबे ग्रातिस हैगा टॉयलेट भी ग्रातिस हैगा एंड नेचुरली गेजेलिगहेड इज ओक ग्रातिस एंड गेजेलिग माकें वाय मेट से अल्ले दार तोरसा और तू आइए आइए पूरा परिवार के साथ आइए और मेट ये फ्रेंड मेट ये फ्रेंडिन मेट ये ब्यूफ्रॉ ब्यूमन

और ये है एक लाइव रिकॉर्डिंग मैं निजाम वागी दुजाई एंड सो गए तो घोर इन मेरफाग तो ये तो